नाइकी क्लब में आया मैं तो, मुझको रोकेगा कौन और कई को, मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा, जिसको जो भी है करना वो